最开始这个谈起来，对，哎，对不对？对待工地，那些都叫工地劳动的。哎，第一个工地，现在你看，人地少，上单了的，第一组工地拆工地开了，工地在上去，从工地搞工拆工地这，都也拆工地啊，人的少到了去。哎，那个第二工地拆去了，电脑的工程，liquid natural gas 工地在上去，电压里送的给你那个地。ये कहीं तो ये लिक्विड के नेचुरल गैस को इतना डीजल को इतना सही अगर ले अंदर $31 million को तबादले सांव थे और लीसों ने अगर नहीं थे कि थी कुछ कुछ ही नहीं समझे तो तूले ये $10 million तो ऐसा कुछ सांव दिया और लीसों ने कुछ सांव ले को हिस्से सांव कर के डाला ये तो था जो चुका थी तो कर के डाला और लिया अगर नहीं थे कि थी ये तो इतना ये तो सीखा नहीं लिक्विड लिक्विफाइड नेचुरल गैस कौन सी तो ये ये刚刚才个就是十三十个才是天空里开的呀，空气到顶头了，就到现在天空里是多少？可能在，可能呢，这两天你看的 vaporization 这些，西康的雪山，西康的科学山是十三十个，就是 liquefied natural gas 还这个还是了是，到西康的雪山这些跟我给的。कुछ नहीं जी डीजल था देर में जो लीड कर रहा है जी डीजल गैस था सांस सत्तम के ठेकोड़ी काकों अच्छी अच्छी कोड़ी जगह ठेकोड़ी है जी इन दस कसवा था कुछ नहीं जगह इन दस देर खाई जी तो मार्क 30% तो 90% को थलों दी कुछ दूसरे सांस जी तो सी कोड़ी और तीन और लीसों जी नहीं देखे थी कुछ नहीं तो在工地看了，工地上上个头在是，都是麦当工地，工人好熟练的，在工地上麦当是，在说把上是麦当上的麦当，搞到的在工地上底下上是在新弄的工地，丢了工地是，刚刚在个在工地给工地搞完了是麦当，工人好丢，工人好用的丢了，搞在搞这个在厂工地还是不怎样的，你说这个你的。他当时给你说过的，那种的，那个的，那种的。我在第一工地三十二中上面看了，看黑龙江上一趟好美景的地方，在那美景中上面看是看到特色的地方的美儿，看到了在那黑龙江上带进那个那哪个子，在那美景过介绍的地方出来，看到个我喜欢的，我这个黑龙江上过介绍的，啊，带进那个那我看到的，看黑山的。那这个地方的这town hall meeting那个进去看，进来看这种上面的看着可真的太好了，就让这上一town hall meeting那个进。但是现在我们的人少，但但是我在吃点甜了，你看那都开了。他看起来上一吃，真上面给我点，上一给你的看的是。在你三十岁的 town hall meeting， 那天 Stephanie， you will lose 了什么东西？在听课的时候，别从那边走，从那边来去，在空地和到个地下室那空地去，在里面我让去我们老东那套房那空地开的天上，真的，就开的天的还有个到一天，你上来让你真的，可是那西康的课的时候。是有口音的，但是从上面看，可能是单面的。可是现在这个后面那个 MLA 的 Kieran Testard， 可能是 Robert Hawkins 学生的，西港地方学口音的。可能但现在学的是一进来是 Sean Horner 学生的，听说他这是都带进去 Holiday 我们店里的，可能来是。上面站在的还有个在这个位置，可以看你上来，看第二日的西康的到大学上考研的，你看第二日当人的少的，学少的，当我日吃的当用钱，第六当我看的包含那个台上学少这样的，你两点里的，你。可是西西学好难看的而已，但是看的 module reactor 是第二级，看的而已 ，nuclear 两点三的，是看的到而已，但是看的是哪个，看的到顶点到而已，真正上面给我的看的只有两点，这里上面给你那个的。可是第一看的西学给看的我连的是而已，但是。这个来，他看的看 industry 看的而已，看的我连的是 industry manager 是什么？
Because then Minister Caitlin Cleveland should have got the Nazar to the Gay, the Galata Condition Gay, called the Sunday. Editing got the secret in the death terror, and got the secret, the SR Reagan ID, because Cleveland got the issue, the sea mines and gay, the sea condition, the Begade with the Gondi proposals, Gondi or Cuba, and Long DSR, Cogin, the Gondi, Gindago, and down to sea condition again, the Long DSR. Because I think when the stage, I didn't think that the idea of doing some of the little 15% tax, because it's a whole year, I mean, you take it to see cognates and they, as you can't take even the only tax, and you did that, or you just see on the dollar, you don't do it. The theoretical, and it's here, you make it in quack, where it's here, you did that, or you see on this, and you more again incentives that you don't do. I see cognates, you want some good being, they would say, you see the. Третий уровень, где еще зенк кондиция, самый уровень, где вы знаете, то си кондиция, там туэжи, то си металл жагов, те кондиция, энергия кондиция, то си зенк кондиция, то ти не там, ти же та цинго и дилю, то си туэжи, то си кондиция, то си кондиция, то си кондиция, то си кондиция, Young life, the nursery, till I reach a mayor, condemned a meat, called a tizati, condigalji. The second one was a good game, there was in the scene, the second one, Kotao, at some kimo green, delivery. Cushion D, Honoka, and this dog at the longest night, and I mean, she crinkled ceremony, homelessness in the Kitty Hondi, the Jitan Kelaji, D, Honoka, and then was in Tundia. Tu es sur le legging de la carrière qui t'y conduit, une fois 2000,